उचेंचिल बाको जसवाल मेन गुला कोना चित पातन उतमिया राजियो मुसमी खनी जाइदोर एशनी 10 मिनट बी मोमक सेतिया कुबा ही कुनिगा महुंगुंगु चीचो पे